को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन।

0: For 15 years, Gennaan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Gennaan. For you, for us and for everyone. The Gennaan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London, or shop the sale online at gennaan.com and junaidjamshed.co.uk.
1: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
3: किक स्टार्ट योर डे द राइट वे विद ब्रास्को ऑन लाइका रेडियो ट्रेंडिंग ट्रैक ऑफ द वीक लाइका रेडियो

0: visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
2: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत एंड मेनी अदर्स.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
2: द एंड वी बीन वेटिंग फॉर. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: रिलीज्ड बाय जी स्टूडियोज नेशन वाइड.
5: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल. रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू. तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ. लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर. एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर. रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं. विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
6: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.

0: Mamster Golgappe at Golgappe da Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
4: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.

0: Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: Morning, Dhoni. Today's song sounds like काटे नहीं कटते दिन ये रात तुमसे जो कहने थे दिल की बात वो आज मैं कहती हूँ.
3: I love Leica Radio.
4: Good morning, Donny Bhai. ये अपुन का गाना है. ये अपुन का गाना है. सुनो. काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात. काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात. लो आज मैं कहता हूँ.
3: Nice Chandra.
4: I love you.
3: हम भी करते हैं आपसे.
4: I love you.
3: I love you, man.
4: I love you.
3: Oh, that's enough. Not that much love.
2: Got it.

0: Johnny, I love you.
1: Oh, I'm mar gaya oye.
0: I love you.
1: Oh, my God.
0: I love you.
1: Are you wearing a sari as well?
2: Good morning, Donnie. आज तो गाना ऐसे सुनता है. कहते नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल के बात लो आज मैं कहती हूँ.
1: तो कह दो ना.
2: I love you.
1: I love you.
2: I love you.
1: I love. This song was so cheesy, but I love it.
2: I love you.
1: I love you.
3: Today's song is
1: yeah.
3: काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात
1: तो कह दो ना
3: तो आज मैं कहती हूँ
1: कल करना
3: बहुत समझदार हो डोनी
1: ओए होए राधा ओए ना दैट वाज सोफिया दिस इज राधा
2: काटे नहीं कटते दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात वो आज मैं कहती हूँ I love you
1: I love you Radha well done you get first time on the radio
4: Hi Donnie
1: Hi
4: I think आज का गाना ऐसे सुनता है
1: गार्गी
2: काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहती हूँ
1: I feel bad when I don't play everyone's now. Darshana.
5: Doni.
1: Hiya.
5: Today's gana is.
1: Yeah.
5: Kaate nahi katte din ye raat kehni thi tumse.
1: Come on, Darshana.
6: Hello, good morning.
1: Morning, Vasha.
6: Today's song is. काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात आज मैं कहती हूँ
1: बाबर साहब आ रहे हैं
7: नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात
1: दिन दिन दिन।
7: आज मैं कहता हूँ
1: कह दो ना दिल से कहो
7: I love you
1: ओए होए मर गया मैं
7: I love you.
1: Oh, Gorbar.
7: I love you.
1: Teen time.
8: God.

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: नेक्स्ट कुश ऑन द मिड मॉर्निंग शो ऑन लाइक हर रेडियो London.
4: Hey, it's Niraj here, and you can catch me on the Sunday Showdown, charging things up for the first 2 hours and then taking it nice and smooth. Every Sunday, 7 to 10 p.m. on Like Radio Greater London and Like Radio Midlands.

0: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: I knew you would go back into the 90s with Pia. I knew it.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Kush on the mid-morning show. Like a London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROAMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
8: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
9: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
7: Releasing nationwide by Zee Studios.
11: गेम छो लंदन, तैयार छो? अब बस कुछ दिन बाकी. SKLPC प्रस्तुत करते हैं बैकस्टेज सिबलिंग्स लाइव. भजनों की धुन पर झूमो, गाओ और साथ मिलकर रंग जमाओ. 9 अक्टूबर रात 8 बजे और 10 अक्टूबर शाम 7 बजे. SKLPC UK, इंडिया गार्डन्स, वेस्ट एंड रोड. तो चलो साथे मणि ने गाइए. बुक करें SKLPC.com/BSS. रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
12: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल. रूम साइज लेमिनेट्स 30 पाउंड से शुरू. तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ. लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर. LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर. रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं. विजिट हिमालय कारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट्स साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.

0: visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323 0730-00-9823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-00-9823.
2: सनशाइन, स्काईस्क्रेपर्स एंड सूक्स
3: फॉर लेस देन यू थिंक. दिस इज अफोर्डेबल दुबई फ्रॉम Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break, or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protected.
4: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
5: Add देसी तड़का to your routine with जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
9: It's not just leaves that are falling this autumn. The price of the Aldi Super 6 is too. You can enjoy award-winning fresh fruit and veg from only 69p, including a juicy saving of 50% on a pack of 5 oranges. Pop in today. You'll be blown away. A bit like those leaves. The Aldi Super 6, a super way to save.
10: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
2: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
3: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Releasing nationwide by Zee Studios.

0: Desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
1: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जिंदगी वहां सेट हो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लंदन आर यू रेडी राघवेंद्र प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस दिसंबर
2: दिल ने ये कहा है दिल से
3: बोल चूड़ियां
1: वन डेट वन शो संडे द 20th ऑफ दिसंबर एट द ओवो अरेना वेम्बली लंदन Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
5: Start

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
2: सनशाइन स्काईस्क्रेपर्स एंड सूक्स
3: फॉर लेस देन यू थिंक. दिस इज अफोर्डेबल दुबई फ्रॉम South All Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break, or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry! Availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: South All Travel. Pay less, enjoy more.
3: South All Travel. At all protected.
4: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan. इन उड़ता तीर
5: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा.
6: देशभक्ति तो याद आ गई.
7: देश कौन सा है ये भूल गया.
4: अ स्पाई मिशन गॉन रॉन्ग विद हिलेरियस मोमेंट्स.
7: बॉर्डर चल रही है.
4: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है फ्रॉम अक्टूबर 9th एट सिनेमा.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: It's not just leaves that are falling this autumn. The price of the Aldi Super 6 is

0: Leica Radio.
1: It's not just leaves that are falling this autumn. The price of the Aldi Super 6 is too. You can enjoy award-winning fresh fruit and veg from only 69p, including a juicy saving of 50% on a pack of 5 oranges. Pop in today. You'll be blown away. A bit like those leaves. The Aldi Super 6, a super way to save.
2: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: फंक्शन रखा हुआ है।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज.co.uk और कॉल 0203773

0: Radio.
1: Time for another Like a Love Classic.
2: बन गया अच्छा
3: अच्छा जी
2: एक बहाना बन गया अच्छा